तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता।

न मान्यो सिमरै शास्त्र वेद सबै वा भेद कै अमेक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे वखान्या दोहरा। सगल द्वारका छाड़ कै गहो तुहारो द्वार। बाहें गए की लाज अस गोविंदास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया।

आहु जगत बिहान के जन्म नानक राख लिखवापन कर कर्म तू ठाकुर तुम बहर दास जीव बिन सब तेरी रास तुम आत पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसूस कनेरे पूय न जाना तुमरा अंतु चेत ऊचा भगवंत सकल समग्री तुमरा सूतर तर तुम ते स्वाग कर तुमरी कात में तुम ही जाने नानक दास सदा कुरबान सलोक दीन हर प्रशूट करा गहन सवाय नानक अखुनासी जय बिन नाव पत जय अष्टपति दास बस तुले पाछा पावे बस कारण भी कुटक पावे बिना दिए दस पी हेर ले ता मुड़ा कह कह करे जस ठाकुर सुना ही चारा ता को कि जस नमस्कार जा कमला का ब्रह्म मीठा सर्व सुख ता हमारा उठा है

सब क्रिय अपनी प्रति राभि को है बाहर उसका विश्वास न हुआ जिसकी वस्तु धा कर आख प्रभ की आज्ञा माना बात है उसे चौकन करे निहार नानक साहिब सदा दया रंग पात्मा की हित सर्वत जान बिरकिशा सिंह रंग रावे ओह विंस हमर बचतावे जो तीसरा सुचारु नार लौट रही होते हैं दंदार बटाऊ सिंह जो लावे निहता को हाथ नावे की हमार हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लय लाई मिथ्या तन धन कुटुंब सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राज जोवन तन बार मिथ्या काम क्रोध विकरार मिथ्या रथ हस्तिया सब वस्त्र मिथ्या रंग संग माया पी हस्ता मिथ्या द्रोह मोह मान मिथ्या अब सुपुर करत गुमान स्थिर भगत साधु की शरण नानक जाप जब जीव हर के चन मिथ्या श्रवण परनंद सुन मिथ्या हस्त पर दर्ब कव हिर है मिथ्या नेत्र पीखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार करता मिथ्या मान पर लो भाई मिथ्या तान नहीं पर बुकार मिथ्या बास रेत बुकार बिन बुझ मिथ्या सब पे सफल दिह नानक हर हर नाम राय वृद्धि सागत की आर्जा साज बिना कह बद सूचा व्यर्थ नाम बिना तनांद मुखावता दुर्गंध।

पैलाव मन हीत। हम निर्गुणी आर नीच अजान अनु तुम्हरे शरण है परख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोहपाय निमक एक निमक हर के गुण गाय अनकराज पोप गढ़ आई हर के नाम की कथा मन पाई व भोजन का पर संगीत रसना जापती हर हर नीत परी सो करणी सो बात अनवंत हृदय बस पूर्ण गुरु मन शासन प्रवधि हुन वै सर्व सुख नान प्रकाश लोक सर्गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आपन किया नानका पिछि फिर जाय बस्ट उद जब अकार स्नान दृष्टि तब अपन तब कह दुता जब तारी अपन सुन समाधु तब वैर विरोध केस संकुमात जब इसका वरण चिहन ना जावत तब हर सोग कह के सब आवत जब अपना पूरा पार ब्रह्मता मोह कहा कहो तो परमापन खेरा वर्ती जा नान करने आना दूजा जब हो तो प्राव केवल तनिता बांत मुकत कहो किसको करने जावी कह हर गमा पार तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार जब निर्गुण प्राव सहज सुबाई तब सब सकत कहो के तठाय जब आप अपने जो तर तब कौन निडर कौन का डर आपन चल दाव करने आर नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुखापना सन तह जन वर्ण कहु कह विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोई तब जम कि त्रास कहो कि सोये जब अवगत या गोचर प्रावीका तब चित्रगुप्त कह भू क्षत्रिय जब नाथ निरंजन गोचरा गति तब कौन छोटे कान बंदन।

तह कौन कौ मान कौन अभिमान स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शतर लगत कहकीस जह ज्योत स्वरूप जो संग समाय तह कसा पूह कवन द्रवताव कर्ण करावन करने आनन करते कनह समाज जब अपने स्वभावन संग बनाई तब कवन वायु वाय मित्र सुत पाय जह सर्व कला जा पह प्रवीण तह वीर गतिब कहा कुचीन जब अपना आप आप उतार तब सगन अब सगन कह विचार।

जय जय शब्द नाह दुआ जय सुन स्नेहद करे प्रभु का जय प्रगटि गोपाल महंत कम अथी अनान कुदर तन का साथी सरण जोग संसरण आई कर कृपा प्रभा मिलाई मेट गए बैर भय सबरी अमृत नाम साध संगलैन सो प्रसन्न पै गुरदीप पूर्ण हो सेव की सेवा जंजाल विकार दे रहत राम नाम संरचना कहती

कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्री मुख वाक पातशाही दसवीं छपै छंद त्वै प्रसाद, चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात, निहंजे रूप रंग अर रेख भेख, को कह ना सकत केह। अचल मूर्धन भव प्रकाश समतोज, कहि जय कोट इंद्र इंद्राण, साहि सहाण गणिजय त्रिभवन, महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, त्वै सर्वनाम कथय कवन, करुणाम वरुण सुमत भुजंग प्रयात छंद। नमस्तवं अकाले नमस्तवं कृपाले, नमस्तंग रूपे नमस्तंग रूपे, नमस्तंग अपेखे नमस्तंग लेखे, नमस्तंग काये नमस्तंग जाये, नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे, नमस्तंग नामे नमस्तंग ठामे, नमस्तंग कर्म नमस्तंग धर्म, नमस्तंग नाम नमस्तंग तामे, नमस्तंग जीते नमस्तंग पीते, नमस्तंग बाहे नमस्तंग आटाहे, नमस्तंग नीले नमस्तंग नादे, नमस्तंग छेदे नमस्तंग गाधे, नमस्तंग गंजे नमस्तंग पंजे, नमस्तंग उदारे नमस्तंग पारे, नमस्तंग सुयके नमस्तंग नेके, नमस्तंग पूते नमस्तंग जूपे, नमस्तंग निरकर्मे, नमस्तंग निरपरमे, नमस्तंग निर्देशे, नमस्तंग निर्भेषे, नमस्तंग निरनामे, नमस्तंग निरकामे, नमस्तंग निरताते, नमस्तंग निरकाते, नमस्तंग निरतूते, नमस्तंग पूते, नमस्तंग लोके, नमस्तंग स्वके, नमस्तंग निरतापे, नमस्तंग थापे, नमस्तंग त्रिमाने, नमस्तंग निधाने, नमस्तंग गाहे, नमस्तंग बाहे, नमस्तंग त्रिवर्गे, नमस्तंग सर्गे, नमस्तंग प्रभोगे, नमस्तंग सुजोगे, नमस्तंग रंगे, नमस्तंग पंगे, नमस्तंग गम्मे, नमस्तस्त रम्मे, नमस्तंग जलाश्रे, नमस्तंग नराश्रे, नमस्तंग जाते, नमस्तंग पाते, नमस्तंग मजबे, नमस्तस्त अजबे, आदेशंग आदेशे, नमस्तंग अपिस्ते, नमस्तंग निरतामे, नमस्तंग निर्वामे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वरूपे, नमो सर्वकूपे, नमो सर्वखापे, नमो सर्वथापे, नमो सर्वकाले, नमो सर्वपाले, नमस्तस्त देवे, नमस्तंग अपेवे, नमस्तंग जन्मे, नमस्तंग सुबन्वे, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, नमो सर्वरंगे, नमो सर्वभंगे, नमो कालकाले, नमस्तस्त्याले, नमस्तंग वरणे, नमस्तंग मरणे, नमस्तंग जरारे, नमस्तंग कृतारे, नमो सर्वतन्धे, नमो सत अबंधे, नमस्तंग निरसाके, नमस्तंग निर्वाके, नमस्तंग रहीमे, नमस्तंग करीमे, नमस्तंग अनंते, नमस्तंग महंते, नमस्तस्त रागे, नमस्तंग सुहागे, नमो सर्वशोकं, नमो सर्वपोखं, नमो सर्वकर्ता, नमो सर्वहर्ता, नमो जोग जोगे, नमो भोग भोगे, नमो सर्वदयाले, नमो सर्वपाले, चाचरी छंद त्वै प्रसाद। अरूप है, अनूप है, अजू है, भू है, लेख है, पेख है, नाम है, काम है, अधे है, अपे है, जीत है, पीत है, त्रिमान है, निधान है, त्रिवर्ग है, सर्ग है, नील है, नाद है, अजय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, भूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंद है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीख है, निस्त्रीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, जम है, भूत है, अछूत है, अलोक है, शोक है, क्रम है, भ्रम है, अजीत है, अपीत है, अवाह है, अगा है, मान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमाने समस्ते निधाने, नमो देव देव अपेक्षी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपौणे, अनंगी नाथे नृसंगी परमाथे, नमो भान भाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो भान भाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी नाम समस्ती स्वरूपे प्रपंगी परमाथे, समस्ते विभूते कलंक बनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्र पाणि, नमो अस्त्र माणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, अपेखी अपरमी अभोगी अभुक्ते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित्य नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देव सुतर्मे, नमो रोगहर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह साहं, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्र, नमो जंत्र जंत्र, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्व करुणासी अनुपे रूपे समस्त निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता, अधो ऊर्ध अर्धं अघं ओ घर्ता, परम परम परमेश्वर पुरुष पालं, सदा सर्वदा सिद्धदाता, दयालंग छेदी अपेदिया, नामं कामक समस्तो पराजि समस्तस्त तानं, तेरा जोर चाचरी छंज।
जले हैं तले हैं पीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे नम दिशरूपे नमो सर्वान समस्ते निधान नमस्तवंग निर्नाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्पेशे नमो राजराजे नमो साहसाजे नमो साहसाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वकृष्ण नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग सुरूपे को कर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट छंद त्वै प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगया चल भोगे चल राजे अटल साजे खल तिरंगा लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग तराण सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वं काले सर्वं काले रुआल छंद त्वै प्रसाद आदरूप नाद मुर्जौन पुरख पार सर्वमान त्रिमान देव भेव आदुदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत विराजे तूत रूप विशाल नाम ठाना जा जा करूप रंग नारे याद पुरख दार मुत जौन आद अशेख देश और न पेश जा करूप रेख नाराग जत्र तत्र दिशा विशा हुए फैले अनुराग नाम काम भीम पे गाम हुन है जाय शर्मान सर्वत्र मान सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन की रूप अने खेल खेल अखेल अखिल अंत को फिर एक दे पेव न जानहि जे बेदौर तेव रूपंग न जात पासु जानहि के तेव रूप रंग न जात पासु जानहि कह जेब तात्मात न जा जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिराय चत्र चक मानहि पुर तीन लोक चौदह के बिखय जग जाप जेह जाप आ देव नाद मूर्था प्यो सब है जे थाप परम रूप नीत पूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व सुरचे सुयंग भव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म काम सु भरम रह भूत लख अपे संग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आव रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख पार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तेन पेक सर्वशास्त्रना जानहि जे रूप रंगर रेख परम वेद पुराण जाके नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आवही बहु चेत मधुपार छंद त्वै प्रसाद गुणगुण धार महमाया पार आसन पंग उपमा नंगन पौ प्रकाश निस्तिर नास जान बाहु साहान साहु राजान राजपानान पान देवान देवपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग आपा अपंग अतमित पार गुणगुण धार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वापरणा डेंडड बाडे चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोविंद मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर नामे कामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासी चतुर चक्र वासी चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पितरे न कर्मंग न काय अजन्मंग जाय न चित्रे न मित्रे परे हैं पवित्रे पृथ्वीशय अदिशय आदृशय आकृशय भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आचुज देसै कया पिज पिसै कया गंज कर्मे कया भंज परमे कया पिज लोके कै अदित सो कै के तूत वरणे कै विभूत करणे कै राजंग प्रभाहे कै धर्मंग तुजाहे के अशोक वर्ण के सर्वा भरण के जगतन कृति है के शतरंग क्षत्रि हैं के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपनूप है के आदिदेव है के आप पेव है के चितरंग बहिने के एक अधीन है के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक बेअब है के गैबल गैब है के फुलगुना के शांस है के कारण कृंद के रोजी ध्यान दे के राजक रही में के कर्म करीमे के सर्वंग कलिया के सर्वंग दलिया के सर्वत्र माने के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गाने के सर्वत्र पाने के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा
हे सर्वत्र काल के सर्वत्र पाल के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सोख के सर्वत्र पोख के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान सदैव प्रदान के सर्वत्र जाप के सर्वत्र स्थाप के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंकली में के बरमुख महिमे के आकल्ला में के साहब कला में के सुन वजू है तमाम लज्जू है हम ऐसो सलाम सलीख दमुदा में गनी मुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बिलंद मकान जमील जमान तमीजल तमाम रजूल निधान हरीफ उल अजीम रजाय किन नेकुल तरंग है पेद हैं अपंग हैं आजीजुल निवाज गनी मुल खिराज इन रुक स्वरूप हैं तेरे मुख तबे पूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सो जुग सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं पेदी रूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्त सलाम हैं सदैव काम हैं निर्वास रूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओम आद रूपे अनाद स्वरूप हैं नंगीना में त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिभादे गंज अगाधे शुभं सर्व भागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं अच्छे जहें अछूत हैं कि नरकं पुरणास हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रभा है सदैव सदा विपुक्त स्वरूप है प्रजगत अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है नुक्त स्वरूप है प्रजगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है नंग है भेख है लेख है भरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है भूत है तूत है अनाश है दास है तंद है बंद है भक्त है विरत है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है लिखे है देखे है लेख है भेख है अटाह है अगाह है संभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात हैं अजाद हैं त्रिपट छंद त्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग पुराणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वमुक्ता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशया नंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूप निर्बाध विभूते नंगी ना मित्रपंगी त्रिकाम निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्र न पुत्र न शत्रु न मित्र न तात न मात न जात न पात न साख सीख हैं अमितो अमीख हैं सदैव प्रवाह हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जूर के हाजर हजूर है मेसु सलाम इस मसलुल कलाम के साहिब दिमाग है के हसुल चरा के कामुल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहन दे के राजक रहन दे करीम लुक मालिक हसन जमाल गनीम लुक राज गरीब निवाज हरी फुल शिकन है हिरासल फिकन है कलंकन प्रणास है समस्त निवास है अंदर गनीम है रजाय करीम है समस्त जुबा है के साहिब कराया के नरकम प्रणास है भेष्ट निवास है के सर्वल गवन है मेसुल रवन है तमाम तमीज है समस्त अजीज है परम परमीस हैं समस्त अदीस हैं आदेश उल्लेख हैं हमें सुलपेख हैं जमील जमा मी कुल माह करीम लक माल के जुर्त जमाल के चलम प्रकाश के अमितो सुबा से के जब स्वरूप हैं के अमितो विभूत हैं के अमितो पसा के आत्म प्रभा के अचल गनंद के अमितो अपंग है मधुपार चंद त्व प्रसाद मन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर गंज हनर प्रपंज अनगन प्रणाम मनमल सलाम हरनर अखंड बरनर मंड अनपमनास मन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जलसल मुदाम अनछिद अंग आसन पंगुपमा पार गत मित उदार जल थल मंड दिश उस भंड जल थल मंत दिश उस बंत अन पवनास तिरत तर तुरास जान बाहु एक सदा ओंकार कथनी अनाथ खल खंड ख्याल गुरुवर अकाल कर कर प्रणाम चित चरणाम छिजगात अजना बात अन झंझगात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपारा डीठ तर मत ठीठ कर्म अन ब्रण अनंत दाता मंथर बोल मना छंद त्व प्रसाद करुणालय हर काल है कलकुंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है त्रित के तरण है जग के कर्ण है मन मान है जग जान है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्व पास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खल खंडस है परते पर हैं करुणा कर हैं अजपा जप हैं थपा थप हैं आकृता कृत हैं आमृतामृत हैं अमृतामृत हैं करुणा कृत हैं आकृता कृत हैं धरणी तृत हैं तेश्वर हैं परमेश्वर आकृता कृत हैं अमृतामृत हैं अजबा कृत हैं आमृतामृत हैं नर नायक हैं खलकायक हैं विश्वंबर हैं करुणाल हैं निरपनायक सर्वपायक हैं पवंजन है अर्गंजन है प्रतापन है जप जापन है अकलंकृत हैं सर्वाकृत हैं कृताकर हैं हर्ताहर हैं परमात्मा सर्वात्म आत्म बस हैं जस के जस हैं पुजंग प्रयात छंद
ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਯੁਗ ਯੁਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੀ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਨਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਯੁੱਧ ਯੁੱਧੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਭੋਜ ਭੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲਹਿ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਾਦੰਗ ਵਿਪੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸਾ ਸੇ ਨਮੋ ਬਾਕ ਬੰਕੇ ਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮਿਤਰ ਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਲੇ ਨੰਗੀ ਆਕਾਮੇ ਏਕ ਅਛਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਪੈ ਅਵੈ ਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਕਾਸ ਗੰਜ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੱਖ ਕਾਲ ਦਿਆਲ ਲੇਖ ਪੇਖ ਨਾਮ ਕਾਮ ਅਗਾਹ ਅਟਾਹ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਅਜੋ ਨੀ ਮੋ ਨੀ ਨਿਰਾਗ ਨਿਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਆ ਕਰਮੰ ਅਪਰਮੰ ਅਗੰਜੇ ਅਲੇਖੇ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁ ਪ੍ਰਣਾਮ ਇਸਮਸਤੁ ਪ੍ਰਣਾਸੇ ਅੰਗੰਜਨੁ ਨਾਮ ਇਸਮਸਤੁ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਮਸਤੁ ਸਰੂਪੇ ਕੋ ਕਰਮ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਸੁਤਰਮੰ ਵਿਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਕਰੀ ਮੁਲਕੁ ਨਿੰਦਾ ਸਮਸਤੁ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇ ਵਿਭੂਤੇ ਗਜਾਇ ਗਨੀ ਮੈਂ ਹਰਿਯੰ ਕਰੀਮ ਕਰੀ ਮਲੁ ਰਹੀ ਮੈਂ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰ ਭਵ ਸੁਭੰ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਯਾਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ

संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहया।